खेत का आली हरु अन्नर बाली हरु खेत का आली हरु अन्नर बाली हरु बादल बृष्टि रबता सा।